0: दादा
1: तुझे तुले
0: नहीं
1: बिम्बड़ ये न बिम्बनु तुले अंचाद या निर मध्य आवड़ उन्दुले
0: मध्य में
1: निर मध्य आप
0: परी
1: एंक मध्य में बच्ची
0: को दूर
1: को मध्य बच्चा

0: Radio Sarang 107.8 FM.
1: भाइयों और बहनों, आज इधर लिंगुना पुल्ले के मन में बहुत धूमधाम से होने वाला है

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

मोगमुजो गरीब नेंगो तुका जीवितांत सांगा दिल्यार माका गोडशें गोडशें सांगतलें गो तुका गरीब देखून